0: tasty.
1: You're all disgusting. This is amazing. Right, that's the answer.
2: Crowd Science from the BBC.
3: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
4: Namaskar, kia ora, pamastan, no. Main hu aapki host and dost Ankita Sharma. Aur aap sun rahe hain NPR par sabse zabardast aur aapka apna The Indian Show. और दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो हफ्ते में कम से कम 7 या 8 बार हमारे दिमाग में आती ही आती है जिसे हम कहते हैं why me यानी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है याद है जब सुबह सुबह हम लोग 5 बजे उठकर जॉब के लिए लेट हो रहे होते हैं और अचानक से बोलते हैं कि मम्मी हमारे लिए चाय जल्दी बना देना और तब हमें याद आता है कि माँ तो हम इंडिया में ही छोड़ आए हैं यहाँ तो सिर्फ है हमारी तन्हाई तो जल्दी जल्दी तैयार होकर हमें चाय बनानी पड़ती है अपने लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है और इन सभी कशमाकश में एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है और हमारे दिल से निकलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैंने ऐसे क्या कर्म करे थे वेल दोस्तों आज इसी क्यों पर वाई मी पर पोस्टमार्टम करेंगे और बने रहिए हमारे साथ

फिर कल हूँ या ना हूँ. बचपन से ही हमें एक चीज तो सिखाई गई है, जब भी एग्जाम होता था और हमारा दिल नहीं करता था वो एग्जाम करने का, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा वो एग्जाम जल्दी से पास कर

फिर तो मजे ही मजे। बोर्ड का एग्जाम दिया तब भी हमें यही किया बोला गया कि ये कर लो फिर तो मजे ही मजे। उसके बाद आई ट्वेल्थ, फिर आई ग्रेजुएशन और डिग्री, और हमें इसी दौड़ में हम भागते रहे कि बस ये कर लो उसके बाद तो मजे ही मजे। दोस्तों मजे वाली कोई चीज वो होती है जब आप उस समय को उस टाइम को जीते हैं, और वही एक एनआरआई की लाइफ है। हम लोग मजे के लिए हम भागते रहते हैं, पर मजा वो है जो हम प्रेजेंटली जिस समय को हम जी रहे हैं। याद कीजिए जब हम वीजा का फाइल कर रहे थे या फिर हम पीटी दे रहे थे, तब भी हमें ये कहा गया था कि एक बार वहां पहुंच जाओगे तो मजे ही मजे। लेकिन असली मजा किस में है? उस समय को जीने में है, उन चुनौतियों के साथ जीने में है जिससे आपको एक नया स्किल मिलता है। मैं कहती हूं कि एनआरआई होना एक आर्ट ही है, क्योंकि इंडिया में जब भी थे हम तो हम यही फील करते थे कि वहां जाएंगे वहां की अच्छी लाइफ होगी, लेकिन जब यहां आते हैं तो चीजें बदल जी जाती है। चुनौतियों का सामना हम सभी को जीवन में करना पड़ता है, भले ही हम भारत में हो या हम न्यूजीलैंड में हो। हर चीज बड़ी ही डिफरेंट होती है। अब जैसे कल की ही बात लीजिए, मैं पामस्टर नॉर्थ की जो बारिशें हैं उसको एंजॉय कर रही थी, और सडनली मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अरे आज तो थर्सडे है और आज तो मुझे कूड़े का डब्बा बाहर रखना होता है। तो मैंने बिन उठाया और अपने दिन की शुरुआत करी। बिन उठा के दिन की शुरुआत इस तरीके से करी कि मैं उसे घसीटते हुए ले गई और बाहर रखा। पर आपको पता है कि मेरा अटायर कैसा था? मैंने नीचे पजामा डाल रखा था और ऊपर रेनकोट। ये है एनआरआई की जिंदगी कि हर चीज को हमें खुद करना होता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे कोई नोन थे, उन्होंने बताया कि प्लम्बर जो है इतने पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने प्लम्बर के लिए क्या किया, उन्होंने अपने जो एकेडमी है, जो फ्री एकेडमी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, यानी हमारा प्यारा यूट्यूब, उसमें से देखा कि जो नल है उसको चेंज कैसे करें, और उसे वो खुद ही चेंज करने लग गए। यही है खूबसूरती एनआरआई की कि जब कोई चुनौती आती है तभी हम एक नया स्किल लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी अगर सोचें कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखिए कि जब भी कोई भी आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपको एक नया स्किल मिलेगा, और वही स्किल आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। तभी तो खुशी खुशी बोल देते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने ये किया ही हुआ है। और वो कैसे? वो मजे तभी आप लुटा सकते हैं जब आप अपनी चुनौतियों में अपना रास्ता खुद बनाए। दिस इज अ लाइफ ऑफ बीइंग एनआरआई।